0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी का फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन ना बा मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी शीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा सेरा तुन माई का तक आमी ना इन रोआ महेने अतो कोलिया कौन बस ओवेंटुरी नी लिली लिली ओवेंटुरी नी पापेल ओवेंटुरी नी ना कंडीशन ओवेंटुरी नी फुटुरु नी हने सने बे तंबने मक हवानो इन ओवेंटुरी बारा माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट नियन प्रॉब्लम हम से में इंडिविडुअल नियन इडी पॉइस हमने मिसाजन माका तंबस ओवेंटुरी दा गोरा ला कंसेगे हते के नो हाडोमी सुसेदारे नी हने सनी आन हुसी तो तेवरिया बारा कीरा हुसी तेरे ना इंजुस क्रिस्टु निहाते ते हने सने ओलाबेले दे अनो हाडो मिहाउ सेवा निहरा ओला हाडो मिहो ने मालुक सीरा तंबने मा खाउ दिहन से हाउ ये ना मुरारा हाउ दिहन हने सने ओलाबेले दे अनो हाडो मिहाउ सेवा निहरा ओला हाडो मिहो सोसेदारे तंबे इंटरेस से हुसी इतने हमु तक ने इंटरेस से बस सोसेदारे ने मक इंपोर्टेंट है अतुलोर सोसेदारे ने बा मुरिस दिया जोवेंटुरी तेंगे सही अजेंट ट्रांसफॉर्मेटर बबत ने बे मक ला दिया नु जोवेंटुरी तेंगे हातुर बत ने बे मक लॉस दिहन लॉस साला देहन साला हाउ इस सेगमेंट दुरा करते ते बजो वेंटुरी सिराने सने हाउ कोंत्रा हाउ निया आमन सेबन हीरा निया साला हाउ लॉस मबे हाउ सेला उजा हमने हाउ सी मबे हाउ सेला उजा हाउ निया इरेस्पोंसिबिलिटी रे हुरी कोंत्रा निनिया रेस्पोंसिबिलिटी रे मकला दिया मबे हाउ कोंत्रा सेबन हीरा निया साला हाउ लॉस मबे उजा हमने इमातुरिदारे कोंत्रा निया रेस्पोंसिबिलिटी रे मकाउ साला कोंसेप्ट टू डेमोक्रेसी इता कर हतुर बत नेबे मक लॉस देन लॉस साला देन साला इदेने मक इंपोर्टेंट लेवल देन निया या कार्गो निया एलिट Entau ni sala ni los ita consider ni sala mas dia ni los elade ni la vele nebe awa pela ba juventud sira tengi kuda hanu in critico critico ni importante tep teves la vele saifel alegria ba critico ni critico ni e uma how bia sate te anesane how hado mi liu how ni amigo sira critico ni duke hado mi e mai de nebe ke la critico tambo husi critico no contradisam di idea ma kamusu mudansa hamusu bot phone sineba Nema koi na repete filo fali tena Jesus Kristu ni lefo. Hado mi luksu seda dene. Jesus dia nane sene ola bele dia no hado mi hau. Se benira ola hado mi one maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawate te maluk jo venturi sira. La bele dia ni mi hado mi hau se benira mi la hado mi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tene belon ela. Hato netik mensajim badak ba jo venturi sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk jo venturi hotu makau hado mi. How la iha telepon ne be makfurak atu hoto bai mi mebe somente iha mensaje ne luta kata dadang susidar ne be makita muris ba ne susidar ne be makna kun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare jane be mako klase ba susidare jane be mak laho klase. Tamba ita kule kon basunta ansuntu lalehan ita helal ita la ihala lehan para tu hetan ita nye liberdade jane be maka lai harohan. Maibe ita kria susidare lalehan ide hirai ne mak susidare laho klase. Nu ita tengke unifika forsa produtivu ita labele harahun malu tamba problema sosial au problema sirselu. Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kulia los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi, ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.

0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी के फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन ना बा मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी सीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी सीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंता सेरा तुन माई का तक Amina in Roma è nato con le con Gioventuri in Lili, Gioventuri in Papel, Gioventuri in Condizioni, Gioventuri in Futuro, ne sanno bene. Tambane ma ho noi in Gioventuri Barak, ma ca hakara heta ne imprego. Ne problema sta nien, problema un semi individuo in nien. E poi ho un mensaje ma ca tamba Gioventuri da ora la consegue a hateke no hadomi sociedade ne hanne sanni an. Hosita teoria barakida Husiden na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seven hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hau hena morara hau dian anesane ola bele de no hadomi hau seven hira ola hadomi sosedade tambane